आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छो प्राप्त होती है। इतने बड़े भाग होते हमारे, लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जागता है। गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद। दरवाजे खोल।

0: हे परमात्मा, तुम्हारी पुकार सुन ले। माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म भारी। धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: बस तो जाए सरोवर।

0: तू ताने पुत्र ते ताने तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास।
1: नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास।
2: बेटी,
1: पिताजी,
2: मैं क्षमा कर दे बेटी।
1: पिताजी, माँ,
2: पुत्र, बेटी, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ।
1: इस तरह न को पिताजी।
2: हाँ बेटी, मैं गलत सा, तू सच ही ऐसी जिस परमात्मा से तेरा विश्वास है।

0: क्यों नहीं समझती? सिर्फ दूनी चंद को मैं अपने अहंकार के कारण राजपाठ से लायक नहीं रहा। हूं मैं वही राह अपना ली है जेड़ी मेरी बेटी ने मैंने दसी है।
1: पिताजी,
0: बेटी मैं इसलिए कह रहा सर तुम घर जाओ।
1: नहीं पिताजी, जिथो मेरे पति ने नवा जीवन मिले सारे लिए वही थान सुलखनी है।
2: रजनी ठीक कहती है राजा दूनी चंद, ऐसी सारी तीर्थ यात्रा के तपस्या का फल समुचे तौर पर ऐसे स्थान से मिले है। ऐ धरती बड़ी पावन है, एनु ऋषिया मुनिया का वरदान है। ऐ बेरी दुख पंजनी बेरी है, ते ऐ छकड़ी अमृत का कुंड है।
3: अमृत के इसे कुंड से गुलाम दास जी ने पहला टक लगा के इस अमृत सरोवर का रूप दिता, जिथे अज लखा इंसान स्नान करके मन निर्मल के तन पंचन करते हैं। की हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई, अमृत सरोवर के चौवां कूटा वाल खुले दर हर एक लिए सदा ही खुले रहते हैं।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इना विशे विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया।

हे मेरे राम ए साडे नीवे करम मंदे पाग मैडे करम तू सानू बख्श लै मेरे राम ए नीच करम हर मेरे इना कुकर्मा विच पै के असी अवगण ते कठे कर रहे ने साडे अंदर गुण कोई भी नहीं पैदा होया। मैं कई बार बेनती करिया करदा आपा जद गुरु दरबार आईये ना उदो कोशिश करिया करिए कि हाथ बन के बेनती करिया करिए हे परमात्मा तू कर कृपा मैं थे एक अवगण छड़ जावा ते इथो एक गुण ले जावा क्योंकि एक एक अवगुण छड़ी जावांगे एक एक गुण ग्रहण करी जावांगे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अवगुणा दा नाश हो जाएगा गुणा दी प्रवृत्ति हो जाएगी। पर जे आपां कोशिश करिए ते तां ही ना हुण तुसी देख लो बच्चे नूं असी नर्सरी च बिठाने आ पहली क्लास विच उस तो बाद अगे एक दो तीन करदा करदा किथे तक पहुंच जांदा है। बस इंज समझ लो कि अज असी नर्सरी च आए हां ते गुरु नानक दे स्कूल विच पढ़ना है ते जिस वेले गुरु नानक पढ़ा रहे हुण बैठे उदो पढ़दियां कोशिश करिया करिए मालिक एक सबक रोज दे दे एक सबक रोज चाहिदा है। जे एक एक सबक करदियां असी उस गुणा नूं ग्रहण करना शुरू कर दिता एक दिन गुण ही रहणगे अवगुण नाश हो जाणगे क्योंकि गुरु नानक दा डर ऐसा है नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे ए ते निर्गुणा नूं गुणवान बना दिंदे हन ते इस दर ते आके भी असी अवगण नहीं छड़दे ध्यान देना अवगण नहीं छड़दे बल्कि असी आउणा छड़ दिंदे। कहिंदे ने एक व्यक्ति एक तीर्थ ते गया ते तीर्थ ते बैठिया मुखी पंडित ने आखिया हे भाई तेरे इथे बुजुर्ग भी आया करदे सन तू भी आया ओ जदों भी आउंदे सन कोई ना कोई अवगण छड़ जांदे सन कोई ना कोई चीज छड़ जांदे सन प्रण करके जाया करदे सन ते तू भी कुछ प्रण कर जा तू भी कुछ त्याग दे तू भी कुछ छड़ दे। कहिंदा तुसी हुक्म करो की छड़ा कहिंदे ने हुण पंडित जी ने कुछ वस्तुआं कुछ चीजां दे नां लै की छड़ सकता है। जिस वेले आज ओना ने ओ अवगणा दा ना लिया कि इन्हां विचों कुछ भी छड़ दे ए व्यक्ति ए प्राणी कहिंदा पंडित जी जिहड़ियां गल्लां तुसी छड़न लई कह रहे हो मैं ए ते नहीं छड़ सकदा हां ए हो सकदा मैं इत्थे आउणा ही छड़िया मैं दोबारा नहीं आवांगा। ऐसे भी व्यक्ति हन ओ अवगण नहीं त्याग दे आउणा छड़ दिंदे ने कई कई बार औखे हो जाते ने कि सच की गल सुनीए क्यों कौन हुंदा है कोई सानू सच कहण वाला आपां जिवें चल रहे हां ठीक है नहीं भाई इस गुरु दे दर ते आए हां आपां कोशिश करिए एक एक अवगुण त्यागण दी ते गुरु सानू गुण देवेगा कि ऐसा नहीं ना करांगे। धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने हर बिसरत तेरे गुण गलिया गल जाणगे इसलिए साहब कहिंदे ने मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे ते गुणवंता मैं ते अवगुण हारा तेरे दर ते आया हे मेरे मालिक तू गुणवान है तेरे अंदर गुण हन ते तू साडे ते कर कृपा।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श। तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के, ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

असी चंगे क्यों नहीं। जे मनुख चंगियाई वाल तुरे ना वह अपने गुण ही गिनी जांदा, कहिंदा वेखो मेरे अंदर किन्ने गुण ने। कदी असी परमात्मा दे गुणा वाल भी ध्यान दिता है? जे एक व्यक्ति दे गुण नहीं गिने जा सकते कि असी परमात्मा दे गुण गिन सकते नहीं। इथे यह कहना पाएगा, हे परमात्मा तू बेअंत है, मेरे अंदर अवगुण बतेरे ने, मैं ते अवगुण बख्शान आया, किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग ना मेरा, किछ रूप नहीं मेरा ते रूप भी चंगा नहीं। हुण तुसी हैरान होवोगे कि रूप केड़ा। सानू अपनी सुंदरता ते मान है, खूबसूरती ते मान है कि असी बड़े खूबसूरत हां। साहब कहिंदे ने ना भाई इत्थे रूप है सेवा दा, किछ रूप नहीं किछ जात नहीं। कईयां नूं माण हुंदा कि मेरी जात बड़ी उच्ची है, मैं बड़ी उच्ची कुल विचो हां। साहब कहिंदे ने नहीं, इत्थे रूप है सेवा दा ते जात है नाम जपण वालिया। उच्ची कुल विच कौन ने? जिन्हां कुल सिमरन है। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग ना मेरा, हे परमात्मा मेरे कुल कोई ऐसा ढंग भी नहीं। फिर कहिंदे ने क्या मुंह लै बोले गुण विहून, नाम जपिया ना ते। क्या मुंह लै बोले, हे परमात्मा मैं किड़ा मुंह लैके तेरे सामने आवां, किवें तेरा सामना करा। कहिंदे ने जिवें एक मित्र अपने मित्र नूं कहिंदा, मित्रा ऐ मेरा एक काम है ते तू कर सकदा है, ते तू ये काम मेरा जरूर करना है। कहन लगा चंगा भाई जरूर करांगा। कुछ समा बीते है कि दोनों मित्रां दा सामना हो गया। हुण जिस मित्र ने अपने मित्र नूं काम किया सी उहनूं भी याद आ गया, ते जिसने हामी भरी सी उहनूं भी याद आ गया। हुण जिसने काम आख्या सी उह कहन लगा लै मेरा मित्र मिलिया काम होया होना है, मैं अज इहनूं पुछना, ते जिन्हें करना सी उहने कीता कोई नहीं, हुण उह अख बचांदा है। कहिंदा किते होवे ना होवे ए अख परां करे ते मैं कोलों दी लंघ जा, इहदा मेरा सामना ना होवे। जे सामना हो गया इन्हें मैनूं पुछना, मित्रा सुना काम कीता ही, मैं जवाब की देवांगा की आखांगा। साहिब कहिंदे ने भाई इसे तरह उस परमात्मा अकाल पुरख ने तेरे जिम्मे एक ड्यूटी लाई सी। जदों तू परमात्मा तो आया है ना, तू संसार विच जन्म लिया है ना, माता दे गर्भ विच सै, उदों तू परमात्मा नाल एक वादा कीता सी, हे परमात्मा एक बार संसार विच भेज मैं तेरा सिमरन जरूर करांगा। उदों एक वादा कीता होया। कहिंदे ने हुण ओ ते तू भुल गए है, ते परमात्मा दा सामना किवें करें? जदों परमात्मा दे सामने होया उन्ने पहले पुछने सुना, मित्रा जेड़ा वादा कर गया सै वह पूरा कीता ही? नाम जपिया ना तेरा, मैं तेरा नाम नहीं जपिया, मैं सिमरन नहीं कीता, जेड़ा वादा कीता सी मैं पूरा नहीं कर सकिया। साहब कह

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

क्योंकि शायद कहीं दिन सेवा औखी बड़ी है, ना मैं रूप ना बंके ने ना सेवा रूपी रूप चंगा नहीं। अज भी असि वेख लो सेवा कर देते हां, पर सेवा करके जड़ तक किसी नूं सुनाना लईए सानू चैन नहीं आउंदा, किसी नूं दस लई ना लईए सानू चैन नहीं मिलता कि मैं सेवा कीती। भाई सेवा करन वाला कदी आखदा नहीं, कहिंदा नहीं, ओदी सेवा अपने आप नजर आ जांदी। ते कहिंदे ने सेवा दा रूप चंगा केवल उसे दा है जिहड़ा सेवा करे जितावे ना, सेवा करे पर दसे ना, क्योंकि बिन सेवा त्रिग हाथ पैर होर नेफल करनी। भाई साहब जी जिक्र करते सेवा तो बिना यह जीवन सफला नहीं हो सकता, क्योंकि सेवा ते सिमरन, मैं तुहाडे चोली गल पान लगा याद रखियो, सेवा ते सिमरन ए दो पंख ने, जब तक ए दोवें पंख ना होण तद तक परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। जिवें पंछी दे दो पर हन दो पंख हन, दो पंख होण उड़ारी मार के किते भी जा सकदा है, हे गुरसिख सेवा ते सिमरन दो पंख हन, जिन्हां नूं इह दो पंख मिल जाण उह उड़ारी ला के किते भी जा सकदे, उच्च अवस्था ते पहुंचा जा सकदा है, पर जद तक सेवा ते सिमरन ना होवे तद तक कुछ नहीं हो सकता। ना मैं रूप ना बंके नैना, हुण बंके नैना दा भाव की है? साहब कहिंदे ने हे मनुख इंसान, मैं तेनू नैन दिते सन के तू परमात्मा नू वेखी, पर तू ते पर तरिया रूप ते पराया धनी वेखी जाना। तेनू मैं नेत्र किसे लई दिते सन? दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिन अवर ना देख, नैन रहे रंग राई अब बेगल कहना जा। ये नैन मिले सन परमात्मा नू वेखण वास्ते, पर इन्हां नैना ने बुरियाई तकी है, जदो तकिया बुरा तकिया है, इनी कोशिश कीती, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जोत तारी हर बिन अवर ना देख। तू वेख पर जिस वेले भी वेख हरी दा रूप वेख, ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग। हुण कुल कहिंदे ने जात नू, कुल किसी उची है ना कुल ढंग ना मीठे बहना। मैं हुने जिक्र कर रहा सा कुल उची ओना दी जेड़े सिमरन करदे, जेड़े बंदगी करदे ने, जेड़े सेवा करदे ने। ते हे परमात्मा मैनू ढंग भी चंगा ना मिलिया, क्योंकि कोई ना कोई ते ढंग होना चाहिए कि परमात्मा सानू आप बुलान लग पवे। ना मीठे बहना, हे परमात्मा मेरे बोल भी चंगे नहीं। जपजी साहिब पढ़न वालियां नूं पता है, ओ जानदे ने कि गुरु पातशाह ने एक गल बड़े कमाल दी कही है, कहिंदे ने परमात्मा मोह के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार। हे परमात्मा ओ बोल केड़े ने, ओ बोल मैनू भी दे, मैं ओही बोल बोलना चाहना जेड़े बोल सुन के तू साडे नाल प्यार करे। मैं पिछे जा जिक्र कीता सी कि बोल एक ऐसी चीज है, एक बोल बोलिया कईया दा मन टुट जांदा है, एक बोल बोलिया कई गुरु नाल जुड़ जांदे ने। फिर इसलिए हे मनुख बोल ओ बोल जिदे नाल तेरा प्यार परमात्मा नाल जुड़े, बल्कि तू परमात्मा नाल टुट ना जाए। मोह के बोलन बोली, आपा कदी पुछ कीती है बोल केड़े ने? जिहड़े बोल सुन के परमात्मा साडे नाल प्यार करन लग पवे। इसलिए सतगुरु कहिंदे ने असी चंगे नहीं, क्योंकि कोई भी काम असी मालक दी मर्जी नाल नहीं करदे, असी जो कुछ करने अपनी मर्जी नाल ही करी जाने, जो साडे मन च आउंदा असी करी जा रहे हां। कदी परमात्मा नूं असी नहीं पुछिया हे परमात्मा तेनू चंगा की लगदा, जिवें तू कवे मैं उवें बोलना, जिवें तू रखे मैं उवें रहा, जिवें तू चलावे मैं उवें चलना, जिवें तू आखे मैं उवें करा। फिर ते असीं कह सकने आ कि परमात्मा साडे ते मेहरबान है,
ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਓ ਬਾਬਾ ਜਰਾ ਰੁਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਾਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

हे माधो, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे, सतसंग तो ध्यान देना। हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर दे सामने नाल चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

अवगुणहारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है किन्ना फखर है ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने ने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए गोविंद हम ऐसे अपराधी गोविंद हम ऐसे

आंख सुनाए पूछे आला है विश्वास। अकृत कण दी तस्वीर की है, मद विच रिद्दा पाए के कुत्ते दा मांस। कहिंदे ने कुत्ते दा मांस, मद कहिंदे ने शराब विच रिने, तरिया मानस कोपरी मनुख दी कोपरी विच उसनू रिने। तिस मंदी वास रत्तू भरिया कपड़ा लहू दा पड़िया, लाल रंग दा कपड़ा। इस नाल इसनू ढक के कहिंदे ने एक बीबी ले जा रही है, ताकल चली चूड़ी कल भोग बिलास। आख सुनाए पुछिया लाहे विश्वास, किसी ने जांदियां पुछ कर ली बीबी कुत्ते दा मांस, शराब दे विच रिन्या मनुख दी कोपरी विच बनिया होया, इनू तू टक के क्यों ले जा रही है, इनू किसे वेखना है। कहिंदे ने बीबी ने जवाब बड़े कमाल दा दिता, कहन लगी वीरा सुन, नदरी पवे अकिरत कन मत होए विनाश। मैं टक के वीरा इसलिए ले जा रही हां किते अकिरत कण दी नजर ना पै जाए। अकिरत कण दी नजर पै गई ए भी भोजन व्यर्था चला जाएगा। सो अकिरत कण दी नजर भी इन्नी भैड़ी हुंदी है, कदी पत्थर ते भी पा देवे ना ओनु भी दुफाड़ करके रख देंदी है। मैं ते समझना अकिरत कण दी नजर तो भी बच के रहना चाहिए है। बचो अड विश्वास घातियां कोलो, अकिरत कणा कोलो, जेड़े किसे दा मनुख दा कीता नहीं जानदे ओना मालक दा कीता की जानना। अरदास करिए विश्वास घाती अकिरत कण, मैं कोई ना रखंदा, पैसा पाई गुरदास जी कहिंदे।

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है। ते नाम मिलदा कितों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा। साच नाम आधार जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि इह गुरु दी शरण विचों मिल सकदा। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहिंदियां ने घड़े नू आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई तां तेरा मनुच्छा जन्म भी इसे तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

तू बेअंत को बिरला जाने, को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा,

ठाकुर कीर्तन हर हर गाई, हर दिन रैन कीर्तन गाई है। गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज उन्होंने कीर्तन दी

कीर्तन हर हर गाई। कीर्तन ने ऐसा रंग चाढ़िया, कर्म खुल गया, कर्म जाग पे। किसे बंदे नू मालक दी महान बख्शिश होवे ते असी कह देने पई ये भागशाली है, ये कर्मा वाला है। गुरु महाराज पातशाह कहंदे ने कर्म जागे, कर्म खुलिया। पर खुलिया किवें? मालक दा कीर्तन गाउण नाल।

अंदर कौतक वरता रहे। ब्यौड़ी च भाई प्राणा जी बैठे दर्शन करन नूं चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन बगदी रही अग दी रोशनी विच वेखिया, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया, जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना है, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहिब कहंदे ने वापर रहियां ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना। भाई गुरदास जी, भाई पराणा मालक दी रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहे हैं। तेरे कोलों नहीं सहा, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा बादशाह, मैनू तुसी आग्या दियो, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कह लगे, भाई पराणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तैनू फना करन दा फिक्र कित्थों पै गया, तू फना करन दियां ताकतां कित्थों आ गईयां तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहिब हस के कहिंदे ने, भाई पराणा जे मेरे चरणा चो तबाह करन दियां ताकतां तेरे कोल आईयां ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख दी रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है। तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, ओदी रजा विच रहो। साहिब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पराणे दे मोढे ते रखिया। ओह जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पहरुए, उन्हां ने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालिक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहिब दी बख्शिश कीती सहनशीलता सदका, फिर भाई पराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदियां होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है।

पिंड दिया तुद आपे सारी रचना तू आप ही बनाई तुद आपे कारे लाया जेहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे जेहा तुद तुर लिख पाया जो रचना बना के जो लेख लिख के तू भेजे ओवे कोई प्या चल रहा है पंच तत् कर तुद सिष्ट सब साजी सारी सृष्टि पंजा तत्ता दे हिसाब तू बना देती कोई छेवा करो जे कुछ कीता होवे किसे को हुंदा ता है नी छेवा तत् इक ना सतगुरु मेल तू बुझावे जिन्हां नू सतगुरु मिल पिया उन्हां नू सोझी आ उन्हां ने इस गल नू समझ लिया कि जेड़े मन दे पिछे लगदे पए ने रोंदे पए ने साहब कहंदे ने जिन्नी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना एक मनमुख करे से रोवे मनमुख रोंदे ने।

सिमरन करदा है जगयासु, फिर वाहिगुरु हमेशा एदे अंग संग हुंदा है। उन्ना चिर ही ठोकरां पैंदियां ने जिन्ना चिर असी उन्हूं विसार दईए। महाराज कहंदे ने दुख तदे जां विसर जावे, पर जे उहदा सिमरन करिए नाम जपिए ते ओ हमेशा हर जगह सहाई हुंदा है, जिवें गुरु पातशाह कह रहे ने।

लोक मथे लगने वास्ते तेरे चरना से पहुंच सदके अग्नि गोविंद सिंह तेरा ही काम शुक्र है जे गुरु के प्यारे गुरु के सिख दीदार मथे करने वास्ते जान ते फिर इस मन ना जान इस ख्याल ना जान के धन सो दे इस जहां तू वसिया मेरे सजन मीत पूरा है मेरे सजन ते मीत मित्र घनेरे करत की मेरा कृपा देख धन सो मीत धन

मरण लिखाए मंडल में आए सबना मरना आया विछोड़ा सबना हर जो जन्मे है हर जो बने है हर जो उपजे है उस हर एक ने मरना ता है जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए बाकी ये गल वखरी है ओ मौत जो आम लोका वास्ते जिवे कबीर जी दा बचन सी जिह मरने सब जगत तरासिया जिस मौत ने लोका दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी मौत ता पता नहीं कदों आउणी मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखे जीण नहीं पई देंदी जिह मरने सब जगत तरासिया सारा जगत तरा तरा कर रहे है जिस मौत जिदा ना लेना चंगा ही समझा जांदा चार बंदे बैठे होण कोई बंदा विच मौत दीयां गल्लां करन लग पवे कहिंदे ने कोई चंगी जी गल कर मौत दी गल माड़ी गल है मंदी गल है चंगी नहीं लगदी जीण दी गल कर मौत दी गल ना कर जिस नूं भाई मूले ने भाई मरदाने दे उस दो पैसियां दे बदले मरना सच ते जीना झूठ लेके दिता सी जिस नूं गुरु नानक ने प्रवान किया सी मरदाने आ कोई तां समझ वाला बैठा है इत्थे सियालकोट विच जिहड़ा मरण नूं सच समझदा है और है भी सच जिंदगी दे बारे कई तरह दे शुभे हो सकते ने शक हो सकते ने शंके रह सकते ने गर्भ विच है जो इस दा जन्म होवेगा जिंदगी इस नूं प्राप्त होवेगी कोई पक्की गल नहीं है शंके वाली गल है जिस दा जन्म हो गया है इस नूं कुछ उमरां प्राप्त हो सकेगी शंके वाली गल है ये बोल सकेगा ये तुर सकेगा शंके वाली गल है डर बनिया रहिंदा है पता नहीं चल सके ना चल सके सारी क्रिया शरीर दी ठीक चले ना चले कल नूं पढ़ सकेगा के नहीं परिवार वाला बन सकेगा के नहीं कारोबार चल सकेगा के नहीं हर किस्म दे शंके हो सकणगे लेकिन एक गल परपक है हर एक जीव दे संबंध विच इह जिहड़ा जन्मे है मरेगा जरूर मौत ना टल सकेगी हर जीव ते आवेगी पर इस दे बावजूद भाई मूला ता कहिंदा सच है जो हर हालत च वापरना ही है सच है ते जो नहीं रहना कल नूं जीवन ओ झूठ है फिर भी मनुख चाहुंदा है सच दी गल ना करो झूठ दी करो मरण दी गल ना करो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े लै जाए जियो मता किते जम आवे ते फड़ के लै जाए बंदा हमेशा हजार जतन करदा है मौत तो बच सकण दे ना कोई बचिया है ना किसे बच सकदा है जो सच है जो वापरना है इस तो बंदा डरदा है कहिंदा दी गल ना करो जे मरने सब जगत तरासिया कबीर जी कहिंदे ने मैनूं तां समझ ही आ गई है मरण विच भी एक आनंद है कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरा है मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद भावे मौत भी तीन तरह की कहिंदे ने शास्त्रकार कहिंदे ने एक तां मरना ओ हुंदा है जदों मनुख दा आत्मक जीवन शुरू ही ना हो आत्मक मौत बंदा मर जावे मरिया ही होवे एक तां ओ मौत है मैं कमाउंदा मर गया मैं इत्थे उड़ीकदा मर गया मरिया ही होया बंदा जीवन शुरू ही नहीं होया क्योंकि जीण दा चज नहीं आया एक ओ मौत हुंदी है जिहड़ी शरीर करके हो जांदी लेकिन एक मौत होर भी ओ है मनुख दी हौं दी मौत मैं मेरी दी मौत जदों धर्म दे घर जन्म हुंदा है इस पासे दी मौत हो जांदी हौं दी मौत हो जांदी ते बंदा इस मौत तों वी डरदा है जिस नूं इह मरना आ गया ना उहनूं धर्म दे मार्ग ते जीणा आ गया जिन्हूं धर्म दे मार्ग ते जीणा आ गया उह शरीर दी मौत बड़ी छोटी समझदा है बड़ी तुच्छ समझदा है जिन्हां नूं चज नाल जीणा आ गया है सच्ची गल तां इह है कि चज नाल मरना भी उहनां नूं आया कबीर जी कहिंदे ने सो मरना गुर शब्द प्रकाशिया गुरु के शब्द द्वारा मैनूं मरण दा पता लग गया अब कैसे मरो मरण मन मानिया मरण ते चित करदा है हौं करके मरण नूं चित करदा है उंज भी जे मौत आवे ची आया मोए मरने का चाओ है मरो ता हर के द्वार उधर जीवन शुरू हो जावे मर मर जाते जिन राम ना जाने मरदे ता ओ ने मरदे ही रहिंदे ने ओ जिउंदे भी मरदे ही रहिंदे ने जिन्हां नूं रब दा पता नहीं राम दा पता नहीं ईश्वर दा पता नहीं धर्म दा पता नहीं
मरनो मरन कहे सब कोई। हालांकि मरण दियां गल्लां बड़ियां हुंदियां, मरण दे संबंध च खोजां भी बड़ियां हुंदियां ने, मौत नूं टालन दे जतन भी बड़े हुंदे ने। मौत दी गल तां बड़ी है पर मरना वेखो जिसका इन्ना चर्चा है, जिहड़ी इन्नी सत चीज है, जिहड़ी हर हाल च वापरन वाली चीज है, मनुखे दे बारे बड़ा ही अवेसल है, ओहदे वास्ते कोई तैयारी नहीं। जिन्हां नूं मरना आया कबीर जी उन्हां दी गल करदे ने, सहजै मरे अमर होए सोई। कुछ लोग ऐसे हुंदे ने शरीर करके मर के भी नहीं मरदे, उन्हां दा जीवन अनंत है, चलदा ही रहिंदा है, क्योंकि अनंत विच वाहिगुरु विच अभेद हो जांदे ने। उन्हां वास्ते मरना काहदा माड़ा है? महाराज धन गुरु नानक पातशाह वचन करदे ने ना।

जे देख इस तन में तारे, जेड़े अपने तन नू लोगां नू पसान वाल के अपना तन भेखी बनाउणगे। जे जे भेख इस तन में तारे, ते प्रभ जन किछ कह ना बिचारे। समझ लियो सब जन मन माही, इत फिर सब अखर आ गया। समझ लो सब जन मन माही, दिमन में परमेश्वर नाही। जे जे कर्म कर डिम दिखाई, तिन पर लोगन मो गत नाही। परलोक च उन्हां नू गति बिल्कुल नहीं मिली। जीवित चलत जींदियां होया ओ बड़े सुखी रहणगे। क्यों के अमीर अपनी माया दे के उन्हां नू सुख देणगे। जीवित चलत जगत के काजा, स्वांग देख कर पूजत राजा। स्वांगन में परमेश्वर नाही, स्वांगन में परमेश्वर नाही। खोज करे सब ही को काही, किथे जी परमेश्वर। अपना मन कर मुझे आना, जिने अपना मन अपने हाथ च पकड़ लिया, पार ब्रह्म को तिने पछाना। महाराज भेखी ने उन्हां दा की हाल होएगा, तो उन्हां चेलियां दा की हाल होएगा। लो फिर हुण सारे पढ़ियो।

जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। लोग कैंची ना मुंदे है, ये धर्म की कैंची ना मुनी जांदा, लोगन लुटी जांदा। जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। नासा मूंद करे प्रणाम, नासा मूंद के नमस्कार करन दिया। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। ये कुछ हिस्सा राधा स्वामी च है कि इंद्रियां बंद करके ते अंदर कूं कूं सुननी। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। फोकट धर्म जिते जग करी, नरक कुंड पीतर ते परी। हाथ लाए सुर्ग न जाऊ, एक्टिंग करनी अनेक प्रकार की। हाथ लाए सुर्ग न जाऊ, जो मन जीत सक

जे जे बाद करत अहंकार, जे जे बाद बाद झगड़ा हंकार वाला झगड़ा जिसे होमे बदे। कई बार परमार्थ की विचार करद हो होमे बद जाती, वेख्या ना मैं जित लिया, मेरे सामने कू नहीं सकिया, बोल नहीं सकिया, मेरे सामने ताकत नहीं पई कि दूजी गल कर सके, वेख्या जितया। कहिंदे उथों रब उथों चला गया, जिसने आ चीज आखी ओहदे कोलों रब चला गया। जे जे बाद करत हंकार, तिनते भिन्न रहत करतार, जान हर जन मन माई, वेदक देव दिखे हर माई। ए झगड़ा मत करो, इत्थे ते रब है ही नहीं। वेदक देव दिखे हर माई, जान लो हर जन मन माही, आंख मूंद को डिंब दिखावे, अंदर की पदवी कह पावे, आंख मीत मग सूझ न जाई। ऐस दुनिया का रास्ता नहीं दिसता, अगला कौन वेखेगा। आंख मीत मग सूझ न जाई, ताहे अनंत में

जो था अब है और आगे हुए है। पूछा मारा तुहाडा गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह साहब जी पूछा गया तुहाडा गुरु कौन है, कहंदे आओ मैं तुहानू अपना गुरु दसा। कोट किंद्र करे जे के, जिन्हें करोड़ा इंद्र बनाए ने, कोट के इंद्र करे जे के, कई कोट उपिंद्र बनाए खपायो, दानव देव फनिंद तारा तार, भूत भविख उपाय मटायो, आज लगे तक सा दिता है सिर ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो। आज तक शिव जी ते ब्रह्मा जिन्हां दा तप करदे ने ते उन्हां दा अंत दा पता नहीं लगदा। आज लगे तप साधत है शिव ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो, वेदक देव वेदक देव ना भेद लख्यो जे

जे गौ सिंबिया पे मैं करत जगते गए महापुरुष कहूं ना पछाना किसी ने पहचान नहीं कड़ी महापुरुष कहूं।

कर्म धर्म को कछु न जाना, ना कर्म दसिया चंगा ते ना धर्म दसिया, आख्या पूजा मेरी करो बस। अमरन की आसा किछ नाही, एक आस तरो मन माही। कहंदे होर किसी की आस ना रखो बिना अकाल पुरख तो। अमरन की आसा किछ नाही, एक आस तरो मन माही। आन आच आस उपजित कछ नाही, वाकी आस तरो मन माही। कोई परत पुराण को, कोई परत पुराण कान सख्त बचाए के फोकट धर्म निदान। कोई कुरान की पूजा कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, हजूर कहते दोवे धर्म फोकट ने और इन्होंने अंत वेले साथ नहीं देना। कान सख्त बचाए के फोकट धर्म निदान, कई कोट मिल परत कुराना, बाचत किते पुराण अजाना। अंतकाल कोई कामना आवा, दाव काल काहू न बचावा। अंतकाल को कामना आवा, दाव

तुम पाई अंतकाल जो हुए सहाय सोकट धर्म लखो कर परमा इन खाली समझो फोकट धर्म लखो कर परमा इन ते शर्त न कोई करमा ए तारे प्रभु हमें बनाया मैं तो दुनिया का हनेरा दूर करने वास्ते आया ए तारे प्रभु हमें बनाया एक पाख ए लोक पिठायो आखो श्रीवा लिहाज करांगा केवल सच दा करांगा दूजे दा किसदा करना नहीं ए कारण प्रभु हमें बनायो भेद पाख ए लोक पठायो भेद दस के जिम तिन कही सबन उचरो जिवें मैनू मेरे वाहिगुरु ने कही है मैं सारे नूं कहन लगा मुखातब करके ए चीज याद रखनी डिंब विम किछ नायक ना करो एक तुम्हें भेख नहीं करना और एक वह मिच भलेखे च नहीं पैना ए मैं बिल्कुल नहीं करना और ना सिख नूं करन देना डिंब विंब किछ नायक ना करो मैं ना पेक करना ते ना वहम करना एक अकाल पुरख की ओट रखनी कहांगा कि लो प्यारे पे सारे तुसी कह लो

फिर करो भाई पूजा, फिर करोड़ रुपया इतने वार दिता जाए ना तो आ जरा सुख है उन्होंने नहीं लभ सकता जरा तुम्हें प्राप्त हो गया। आओ पे शुक्र आके धनवाद करिए, गुण गाइए, साडा आया हुआ सफला हो जाए।

तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाओ बलहार, सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुरु नानक जप जा।

अंदर कौतक वरता रहे। ब्यौड़ी च भाई प्राणा जी बैठे, दर्शन करन नू चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन मगदी रही अग दी रोशनी विच वेखिया, कुरला उठे साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले, सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नू सिखां नू फड़िया, जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले, मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह, गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना, भाई गुरदास जी भाई पराणा मालक दी रचना है, जो कर रहे हैं मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे कोलों नहीं सहा, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। पातशाह मैनू तुसी आग्या दे, मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कह लगे, भाई पराणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर ले, तेनू फना करन दा फिक्र कितों पै गई, तू फना करन दियां ताकतां कितों आ गई तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों। ते साहब हस के कहिंदे ने, भाई पराणा जे मेरे चरणा चो तबाह करन दियां ताकतां तेरे कोल आईयां ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवां मैं नहीं कर सकदा। नहीं भाई पराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए, कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है, तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, उहदी रजा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पराणे दे मोढे ते रखिया। उह जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पहरुए, उन्हां ने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया, बड़ा मारिया, पर मालक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहब दी बख्शिश कीती, सहनशीलता सदका फिर भाई पराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी, वाहिगुरु वाहिगुरु जपदिया होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी, क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है।